रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई।

प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपताशह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रास नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सत गुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सत गुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत

तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया सब ने।

साध सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख सम्माना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे

तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुध जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है तुध जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुध जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह।

ऐसोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजयोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू

साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू।

जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड़ काश भेद ना जानत महादेव।

संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दों ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

तेरा है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख, मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया एह वडे आईया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुने सची बाणी, संत साजन पए सरसे।

गुण गोविंद गाहे सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दयाहे। श्लोक महला पंजवां अंतर

अहनिस सहज सुबाई, दर्शन परसें गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुर्स।

क्या भगवान सगल समग्री तुम रे तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदया वै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय दसा पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलना जी। गुरु साहब जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली

तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास पे साहेब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई मन बिलास पे साहिब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखी है करते कहो बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरपव का सोहिला वारी जित सोहिले सदा सुख हुए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देख गा देवन हार तेरा दान कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संभ सह लिखिया मिलकर पाओ तेल देव सजन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पाहो चा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विश्वे छस्या कड़ियां पहरा थिति वरी महुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत तेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तुहे कहो सहस मूर्त नन एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट हुए ज्योतिष पावे सो आरती हुए हर चरण कमल मकरंद लो पित मनो आंधनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कहो होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाए आ मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुली पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ सकत हर रस साधन जानिया तिन अंतर होमै कंडा हे ज्यो ज्यो चलै चुभै दुख पावै जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरै नारे मन गुर मिल का सवारे रहाओ एव संसार विकार संसे मैं तरेव ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वह रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा
ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾ।

0: नानक हर हर अमृत बरख
1: भगत जना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर का नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर हर औखद साधक मात
1: हर जन कै हर नाम निधान
0: पार ब्रह्म जन की नोदान
1: मन तन रंग रते रंग एक
0: नानक जन के बिरत विवेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर का नाम जन को त्रिवित भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जगत का पर न भंग
1: हर का नाम जन की वडियाई
0: हर का नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर

0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या राज जो बन तन मा
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान
1: मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान
0: अस्थिर भगत।

0: जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: यो कृपन के निराश धाम।
1: धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ता कै बल बल जाओ।
1: रहत अवर कश अवर कमावत,
0: मन प्रीत मुख मंडलावत।
1: जानन हार प्रभु परबीन,
0: हार भेद न काउ कीन।
1: अवर उपदेश आप ना करै,
0: आवत जाओ जन मरे।
1: जिसका अंतर बसै निरंकार,
0: उसकी सीख तरह संसार।
1: जो तुम पाने तिन

0: मस्त सुवारी
1: मानते सुप्रभ कहो कबहु ना बेसारी
0: हे प्रसाद बाग मिलक तरा
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: इन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठत सद ते सहते आई।

0: साध संग मल सगली खोट,
1: साध के संग मिटे अभिमान,
0: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
0: साध संग सब होत नबेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन,
0: साध के संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी,
0: नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी,
1: साध के संग अगोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर फुले,
1: साध के संग आवह बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बैन,
1: साध के संग न कतहु तावे,
0: साध संग अस्थित मन पावे,
1: साध के संग माया ते भिन्न,
0: साध संग नान

0: इच्छा सोई फल पावे।
1: साध कै संग न बिरथा जावे,
0: हर ब्रह्म साध हृदय वसै।
1: नानक उदरै साध सुन रसै,
0: साध कै संग सुनो हर नाओ।
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध कै संग न मन ते बिसरै।
1: साध संग सर पर निस्तरै,
0: साध कै संग लगै प्रभ मीठा।
1: साधु कै संग कट कट डीठा,
0: साध संग भय आज्ञाकारी।
1: साध संग गत पई हमारी,
0: साध कै संग मिटे सब रोग।
1: नानक साध

0: संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै इकै रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज।

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथय न जाय दियाखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: पाइये धर्म।
1: नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म,
0: जिसके मन पारवम का निवास,
1: जिसका नाम सत राम दास।
0: आत्म राम तस नदरी आया,
1: दास संतन पाए तिन पाया।

0: कई कोट बन भ्रमे उदासी
1: कई कोट वेद के श्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान तार है
0: कई कोट कप काप विचार है
1: कई कोट नव तन नाम त्याव है
0: नानक करते का अंत ना पाव है
1: कई कोट पहे अवमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपेगा।

0: तित लगना
1: नानक करते की जानै करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उबाए
1: कई कोट पाथर बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सशियर सूर नखेत्र
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर
0: सगल समगरी अपने सूत धार
1: नानक जिस जिस भाव तिस तिस निसतार
0: कई कोट राजस तामस सतक
1: कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे
0: कई कोट जख किन्नर पिसाच
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच
0: सब ते नेरा सब होते दूर
1: नानक आप अलिपत रहया भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म जीव है मर
1: कई कोट बहजोनी फिर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया मह चिंत
0: जह जह पान तह तह रखे
1: नानक सब किश प्रभ कह हाथे
0: कई कोट भय बैरागी
1: राम नाम संग तिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजनते
1: आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: तिन को मिले ओ प्रभ अविनाश
0: कई कोट मांग सत्संग
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको ए आप सुप्रसन्न
1: नानक ते जन सदा तहन तन
0: कई

0: कबहु नृत करे बहुपात
1: सोए रहे दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल
2: सर्व की ओतरवाल
0: कबहु होए बहे बड़ राजा कबहु अप कीरत मह आवे
1: पला पला कहावे
0: ज्यों प्रभ रख तिव ही रह
2: गुरु प्रसाद नान सच कहे
0: कबहु होए पंडित करे बखियान कबहू तट तीरथ स्नान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनक जोन परमे परमिया
0: नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे
1: ज्यो पावे तिवे नचावे
0: ज्यो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा वरना कोए
0: कबहू साध संगत एहो पावे।

0: संत के दुखन आर जा कटै,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटै,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन शोभा से हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करै,
1: नानक संत संग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवै,
1: संतन के दुखन का ज्यो लवै,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा महं जलै,
1: संत के दुखन सब को शलै,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीच नीच आए,
0: संत दुखी का था को नाहे,
1: नानक संत पावे ता ओई पी गत पाहे,
0: संत का निंदक महा अत ताई,
1: संत का निंदक खिन टिकन न पाई,
0: संत का निंदक महा त्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज तेहीन,
1: संत का निंदक दुखिया।

0: संत का दुखी छुट्टे अकेला
1: जो बुआड़ ते लखे तमाहे दोहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी साध मिथ्या कहत
0: कीर्त निंदक का तुर ही बया
1: नानक जो तिस भावै सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है
1: संत का दुखी ना मर ना जीवाई है
0: संत के दुखी की पूज्य न आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्ट कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: आया कीर्तन मिट कोए
1: नानक जाना सच्चा सोए
0: सब कट तिसके ओह करन हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात
1: जिसे त्यावहु सास गिरा।

0: मन भूख
1: नानक तिसन लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे
1: सो संत सोहेला नहीं जलावे
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया जब देखो तब सब किश मूल
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: न किश जन्म नह किस मर
2: अपन चलत आप ही कर
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
2: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल मह आप
2: अनक जुगत रच थाप थाप
0: अविनाशी नाही किस खंड
2: हार रहे ब्रह्मंड
0: अलख अपेव पुरख परताप
1: आप जो पाए था नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सगल सुगंध
0: प्रभ के सेवक सगल उधार।

0: मंगल सर जाके
1: सर्ब थोक सुनिए है करता कह
0: राज में राज जोग में जोगी
1: तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी
0: चाहे चाहे भगत सुख पाया
1: नानक तिस पुरख का किने अंत

0: काहे सोच कर है रे प्राणी, बारंबार बार प्रभ जपिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया, नाम धन नामो रूप रंग,
1: नामो सुख हर नाम का संग,
0: नाम रस जो जन त्रिपताने,
1: मन तन है नाम समाने,
0: उठत बैठत सोवत नाम,
1: नानक जन के सत्काम,
0: बोलो जस जिह बा दिन रात,
1: प्रभ अपने जन की मिलात,
0: कर है भगत आत्म कह जाए,
1: प्रभ अपने स्यों रहे समाए,
0: जो होआ होवत सो जाना,
1: प्रभ अपने का हुकम पहचाने,
0: किसकी महिमा कौन बखानो,
1: किसका गुण कह एक न जानो,
0: आठ पहर बस प्रभ बसै हजूरे,
1: नव नानक से जन पूरे,
0: मन मेरे तिन की ओटले,
1: मन तने अपना तिन जन दे,
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता,
2: सोजन सर्व तो का दाता,
0: किसकी शरण सर्व सुख पावा है,
1: किसके दर्श पाप मिटावे,
0: अवर से आन पस

0: संत जना मिल करो बेचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अवर उपाव सब मीत में सार हो,
1: चरण कमल हृदय में उरतार हो,
0: करण कारण सो प्रभु समरथ,
1: दृढ़ कर कहो नाम हर वथ,
0: एह तन संचो हो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस रखो मन माहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे,
0: जिस तन को चार कुंट उठतावे,
1: सो तन हर सेवा ते पावे,
0: जिस सुख नित वाच है मीत,
1: सो सुख साधु संग परीत,
0: जिस सुबह को कर...

0: सो क्यों बिसरा जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरा जे अगन में रख है
1: प्रसाद को बिरला लख है,
0: सो क्यों बिसरा जे बिखते काट है
1: जन्म का टूटा गड है,
0: और पूरे तत यह बुझाया
1: अपना नानक जन त्याया
0: साजन।

0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्वकटाकर्त प्रतपाल
0: आदि पुरुष कारण कर्तार
1: भक्त जन के प्राण आधार
0: जो जो जपाय सो होए पुनीत
1: भक्त पाए लावे मनीत
0: हम निर्गुणियार नीच अजान
1: नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़े आई
1: के नाम की कथा मन पाई
0: बहु भोजन का प्रसंग।

0: सेवा बने आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इससे ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसया निरंकार
0: बंधन तोर बहे निर्वैर
1: मन दिन पूजे है गुरु के पैर
0: ये लोग सुखिए परलोक सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मेले
0: साध संग मिल करो आनंद
1: गुण गावो प्रभ परमानंद
0: राम नाम तब

0: को नेरा
1: मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा
0: सुनो उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: हलत पलत दोएले हो सुवार
1: राम नाम अंतर उरता
0: पूरे गुर की पूरी दीख्या
1: जिस मन बसाय तिस साच परीख्या
0: मन तन नाम जप हो लबलाए
1: दुख दर्द मन ते पहु जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगाह निभाए खेप तुम्हारी
0: एका टेक रखो मन माहे
1: नानक बहुर न आवह जाए
0: इससे दूर कहा को जाए
1: उपरै राखन हार ते आए
0: निरपौ जपै सगल पौ मिटे
1: प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार
1: तिस जन कौ कोए न पहुचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदहत श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर।

0: अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सकल समग्री एकस कट माहे
1: अनक रंग नाना दृष्टा है
0: नवनीत अमृत प्रभ का नाम
1: देही महेश का विश्राम
0: सुन समाद अनहत तह नाद
1: कहन न जाये चर्ज विस्माद
0: तिन देखे आ जिस आप दिखाए
1: नानक तिस जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट घट व्याप रहे भगवंत
0: करण।

0: आप भला करतु आतनी की
1: आपे जन अपने जी की
0: आप साच धारी सब साच
1: संग राज
0: ताकि गात में

0: और सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के
1: सूर सराग सुध सुधारक संत समूह अनेक मति के
0: नहीं देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा हूँ
0: माथे मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: कोट तुरंग कुरंग से कूदत कौन के कौन को जात निवारे
0: भाई भजान के भूख पले गदन्यावत शीस न जात विचारे
1: इतने पे तो कहा पे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे
0: जीत बिरह सब देश निशान को बाजत ढोल मृदंग नगा

0: निंदन साचर पूत पवे खपवान जपेंगे।
1: जीव जतै जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे।
0: तुन प्रतापन बाढ़ जै तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: साध सोम प्रतापन भय जाकर सत्र समय लोग जपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराध पजोन तिर लोग को राज करेंगे।
1: ओड स्नान गजाज गदान नेक सुरंबर साज करेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची बत अंत फसे।

0: जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो।
1: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहा मत एक न मान्यो।
0: सिमरत शास्त्र वेद सफे पौ पीद कर।

0: जैसी अग्नि उधर में तैसी बाहर माया।
1: माया अग्न सभी को जात
0: पाना ता जमया परवार पला पाया।
1: जब छोड़के लगे तृष्णा माया अमर वरताया।
0: ये माया जित हर विसर मुह उपजय।

क्रोध लोभ मोहंकार तो बचा करके भावना श्रद्धा सहित दर घर दी सेवा दे योग करना, हर मैदान फतेह बख्शिश करनी, सदा अंग संग वर्तना। सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका चार पैरैन सुख भाणे अंदर बतीत होई है, दिन चढ़े अपने भाणे अंदर सुखमई बतीत करवाउणा। रहमत करनी आप जी के दर घर दे प्रीतवान भाई कवलजीत सिंह।

समूह संगत नू निवाज दे हुए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी। हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो। अखरवाद घाट भुल चुक माफ।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोक द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह करवार सब को पूरा ते होवे कटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाच बोरी पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याटे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कान उन आवेता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु। जीवन वाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चारी मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड चकिया देख चलाई ते वाही देख रेड़ कीता जिन्हें प्यारे सत्यारियां की कमाई दते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खूपरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े आर नजर आए गए गुरुद्वार सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे तरीके सत्संग ने भाया तिना की कमाई दते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वारा दत्ते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है जित आवर का सत का सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब रखा रियायत देव देख की फतेह बिरद की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु जी बनवाज पंथ सरदार साहब दार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ छोड़िया गया है उन्हें गुरु दर्शन की दार से सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी बख्शो हे न्योटिया जी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे तो आने रास हे गरीब महाराज जी आपके चरण कमला अरदास बेनती आपने बख्शिश की है गरीब महाराज अमृत वेले प्रकाश पाने हुए संगतों को दर्शन दर दे के निहार उतार जी बेअंत बाणियों के पाठ हुए आज रागी संघा ने आपके चरण जासा की वाद संपूर्ण कीर्तन कीते छे पुड़ी नाम शब्द कीर्तन तार कृपा करो होइया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड परमात्मा बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय प्रसानी कृपालता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी टाली बाट बुद्धि बख्शिश करो कि इस खुशी में आप दख्शियां दातों में लंगर देगा तुट सेवा प्रवान करनी कृपा महाराज पुत्र कड़ाप शाह देगा तैयार करके आस वे हाजिर ने आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद सतसंगत की असना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी लगा तुर सेवा प्रवान करनी आपने चरणा सेवा कर रहे सारे टैली सिंगा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ी कला बख्शो अरे सदा आइए सदर अपने चरणा सेवा की भावना बखनी पालता करो गरीब महाराज कृपा करो जी दतार जी अमृत वे तो लैके दाती आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु गरीब महाराज आप जी दर का सेवा दा सरदार शिव सिंह मावी बीबी अमरजीत कौर मावी अपने पातशाह जी व्याह की वरेगंड आपके चरणा धन्यवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद मालिक हाजरीदार प्रवान करो बख्श कर दें अपने सेवकों के सिर से मेहर प्रार्थ रखो ताकि आने वाले समय में भी इस तरह अपने सेवकों गृहस्थी जीवन की खुशियां खेड़े बख्श कर रहे सारे मावी परिवार में तंदुरुस्ती सुख शांति चाड़ी करा करो बच्चों को तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो और बच्चों की कामयाबियां बख्शे करके चरणा तुरा जी बनाओ कृपा करो दातियां जी आप लाजमान रखो सेवकों सदा खुशियां बख्शो अपने चरणा सेवा की हमेशा दाद बख्शा निपालता करो जी गुरु जी भाई कृपा गुरु जी चार जीओ आप दर के सेवादार भाई गुरजीत सिंह बाजवा जन्मदिन की खुशी बेहतर मैला खाद तार प्रवान करो बख्श कर दें गुरजीत सिंह बाजवा तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो सदा चरणों जुड़ कर रखो के पातशाही गुरसिखी दाल बख्शो नाम की दाल बख्शो सेवक ने सारे परिवार में तंदुरुस्त सुख शांति चाड़ी खड़ा करनी कमाइया सबर करो घर दुआ की बख्शी करी निपालता करो जी गुरु जी भाई कृपा करो सेवकों खालसा पंथ एक तत्व प्यार की बख्शी करके सत रोज दाल बख्शो चरणा ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शी करो हर मेरे जवान फतेह बख्श करनी वार्ता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराज कराने बैठिया लाइव कृत की शर्म करनियां सारिया संगत हाजियां प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ सतारा अपने कृपा की संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾਂ ਘਰ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਧਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਾਂ ਦਾ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧਰਮੀਰਾਨ ਕਰਿਆਓ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਨਰ ਵਾਹਿ ਵਧਾਰ ਵੈਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾ ਕੀ ਜਲਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਭਰ ਬੁਲੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵਨਾ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਵਾਜ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਤਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

काहे न खंड सो अवगुण मेरा सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खासा मंदी नूर अरसोह कुरसोह झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया

आप जी जिन्ने भी बैठे हैं स्क्रीन तुहाडे सामने है, महाराज की असीस बन जाए, नाल नाल मां ते बाप की भी असीस बन जाए, क्योंकि दूजा रब मां नू इस करके आख्या भी रब ने अपने गुण मां विच टिका दिते, ताई दुनिया दूजा रब कहती है मां प्यो ये मेरे रब ने, जिन्हां ने मां प्यो रुसा ले उन्हां दे प्यार नू नहीं माणिया कहिंदे उन्हां नाल रब भी रुस जांदा है। मां प्यो पर हर करे दान, भाई गुरुदास बईमान अज्ञान पर है, तेनू गुरु नानक दे घर विच भी जगह नहीं मिलनी जे मां प्यो नू प्यार ना दिता प्यार ना ले। ये पावन पंक्तियां एक बारी कह दियो सारे, सतगुरु जी मैं तेनू अपने मां प्यो विच देखिया, क्योंकि तू दयाल है, तू हर जगह है, तेरा रूप मेरे मां प्यो विचों तेरा रूप मैनू नजर आता है। गायो सारे।

पुत्र सुपुत्र करेंदे महावाक अनुसार सुरगासी गोपाल सिंह जी की सालाना याद विच सेवक परिवार बीबी इंद्रजीत कौर ते परिवार वालों बेअंत माया कीर्तन भेट हाजिर हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपालता करन सारे परिवार सुखुरतां विछड़े रूह आत्मा नूं अपने चरणा कोलां दा नवास बख्शन। आओ केवल बाकी 9 मिनट ने, उस 9 मिनटा दे अंदर एक शब्द आपां गायन करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह बेअंता बेअंत गुण तेरे, केतक गावां राम तेरे चरणा तेरे चरण धूड़, बड़ भागी पावां राम।

निमख न बिसर तुमको हर हर सदा भजू जगदीश। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी दी पाक पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवाना विच हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो गुरु बख्शिश गुरु रहमत दा सदका सत संगत विच संगती रूप अंदर प्यार भावना सहित जुड़ बैठे हो। बड़े ही प्यार दे नाल आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सरवण कीता, उपरंत प्रबंधक साहबाना वालों बड़े सुचजे ढंग दे नाल सारे वेरवे आप जी दे नाल सांझे कीते गए जो गुरुद्वारा साहब जी दे प्रबंध विच माया दी लागत माया दी आमदन बारे आप जी ने वेरवे प्राप्त कीते। आओ समा होया अमृत बाणी दी कथा दा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी दी आपां विचार कर सकीए। कुछ कहण तो पहला फतेह दी सांझ करो, प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार जग दी ए रवायत है कि दुनिया दा हर एक प्राणी प्रवास करदा है, हर एक प्राणी यात्रा करदा है। कल्ला मनुख ही प्रवासी नहीं बनदा, भाव अपना मुल्क छड के किसे होर इलाके विच खित्ते विच जाना रोजी रोटी लई परिवार लई पेट लई। तकरीबन दुनिया दे बहुत जीव ऐसे ने जो बहुत लम्मा लम्मा प्रवास करते हैं, जिन्हां विचों बहुत कमाल दे पंछी हन, जानवर भी करते हैं।

सत्संगे जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाच बोधि पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लाई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कानून दावताए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास दादा चैन करके खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया दे चलाई तेग वाही देख निड़ किया दिना प्यार सत्यार की कमाई रहा अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खूपरिया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आड़ न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानिया की धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे सत्संग नवाया तिना की कमाई रहा अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त बस गुरुद्वारों का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेताव है जित आमर का सर का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तरह देख देख की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जो दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पंत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंजा सदार से आजदार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आदि पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने देखो दर्शन दीदार से सेवा संभाल दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटियां ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु धन धन साहब गुरु नानक देव जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब धन धन दसा पाठी पित्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दतार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुद पावे ताने रास हे की बनवास जी आपके चरण कामना अरदास में ध्यान बख्शी थी आपके चरण अज आज हफ्ता वाली सोने कीर्तन दरबार बनवास जी अमृत वे द्वारा हुए तारा बख्श की है अगे इस समय पार्टी रागी सिंह ने आपके चरण बैठ के पितृ गुरबाणी के कीर्तन गायन किए ने कथा विचारा ने कथा विचारा की दार जे पातशाह जी इस समय आप दर कर स्वर्गवासी सरदार गुरपाल सिंह जी सरानाम मिठी याद भी दतार पिता जी उन्होंने आत्मक शांति वास्ते आत्मिक कल्याण वास्ते बीबी इंद्रजीत कौर सारे परिवार को दतार जी अज अवतारी कीर्तन दरबार जी तन मन धन सेवा कर दतार बख्शिश करो परिवार वालों पुत्र कड़ाप शाह जगह तैयार कर दतार आप भी भोग लाओ शीर प्रसाद साहब संघ जी रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जा पितर नाम जपे बख्श करो दतार कि परिवार वालों लंगर देगा की अटुट सेवा है प्रवान नहीं करनी इमरा बख्शियां दाता है परिवार को बारिश आपके चरण बेटा का प्रवान करो कमाइया सब दतार बख्शिश करो मेहर कर दें दतार जी सरदार गोपाल सिंह तो इस मालरोग की यात्रा करद हो भुलत बाई बख्शो उन्हें की थे गरीब नवाज गुण अवगुण नाम चार दे कैद कबीर सुनो संतोखे जी करो ने मेरा आपकी बार बख्श बंदे को बहुर न पोज फेरा मावा कर आप कृपा करो सरदार गुरपाल सिंह की आत्मा चरना जी आत बख्शो ठंड बख्शो उन्हें आत्मा आवागा बचा के परिवार को बच्चों रिश्तेदारों भाणा मन बल भी ताज बख्शिश करो जी सरदार कृपा करो परिवार में सुख रखो तीर्थ बाद बख्शिश करके विछड़ी हुई आत्मा शांति बख्शो जी सरदार कृपा करो आपने कृपा की उन्होंने पातशाह जी और सेवादार बेंत पाठ सेवा की कबर प्रेरणा प्रवान करने की जिम्मेवारी कृपा करो सच्चे पातशाह जी हो बेटी तिब्बत कौर की मत बुद्धि चंगी हो जाए दतार से परिवार में अरदास में दी किरण महाराज अपने मां बाप की आगे अगर हो जाए तो परिवार में चारी कला बखंड कृपा करो दतार मेहर करो चतर सिंह बड़वाल परिवार की सुख शांति चारी कला वास्ते बेहतर माया बेटे प्रवान करो जी किरण महाराज भाई मनजिंदर सिंह परिवार की सुख शांति चारी कला वास्ते बेहतर माला खादर दतार प्रवान करो किरण महाराज सुखी परिवार विधि परिवार सुख परिवार दतार परिवार वालों बेहत माया आपके चरना बेटे चरना प्रवान करो जी किरण महाराज भाई निशान सिंह नवे घर के शुकराने वालों अरदास बेनती कर दिया बेहतर मारे खाली तरना प्रवान करो जी गिमराज भाई गुरमीत सिंह बोपाराए फैमिली वालों संपूर्ण पाठ सहज पाठ आप करके दिन तार पिता जी हो
ਆਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪੁਰੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬਾਲਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗਿਰਵਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਟਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾਦੀਕਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਨਿਭਾਲਦਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਦਤਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾ ਕੀਤੇ ਦਤਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪੁਰਾਣ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਰਸਦਾ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵਾਜਬ ਦਤਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਦਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆ ਲੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰ ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਚਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵਾਧ ਦਤਾਰ ਸਾਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਦਤਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਉਪਰੰਤ ਬਾਤ ਪਾਇਆ ਦਖੀਰ ਬਾਈ ਰਮਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ

साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद बसै मन माही जन्म जन्म के किल बिख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मंगे संत रवाला।